0: गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरन न जाई धोती टिका ते जप माली तैन मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बस जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पियावे होई सा कुड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहा शर्म तरम करे डेरा दू नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती तो खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान ले स्थान ले पूजे पुराण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा ए अन्न साडा फिटा तन फिटा फिर करेन मन जूठे चुली प्रेम कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चते अंदर सब।

आन सबद ब्रह्म ज्ञान संगत ब्रह्म थान प्रेम पहचानिया सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान काम निहकाम उन मन उन मानिया सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसमदी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी

नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाय अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ शांत ज्यो जानह त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनौ असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रात साध भूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कुलिया लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ निरहु ते निरिया बिनवंत

संत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोय थान थनंतर आप जाल थाल पूर सोय जाल थाल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही

मशक्कत काल नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सब कुछ तेरा बस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर मान मता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न होई, तू करता करना मैं ना ही जाहों करी न होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सुहा।

सहाय, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। सवैयन पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब, बह भेद कहे हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं न कहियो सब तोहे बखाने। दोहरा

गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौषाढ़ गहियो तुहारो द्वार बाहीं गही की लाज आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ यह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर।

पाय उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी सुन।

ज्यों जन हो त्यों राख, हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख, अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे, नित प्रत सद भूलिया मोह मगन बिकराल माया, तो प्रसादी भूलिया लोक करत बिकार बिखड़े, प्रभ नेर हों ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो, काड पव जल फिरिया असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लै हो हों पापी बड गुन है गार, लिख कत है न छोटी है खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार, मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्वास ना परियारे, दर्शन प्यासी दिन सुरात चित बहु अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत, सुख टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी, सजन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है, सवना दावे साहु सजन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है, सवना दावे साहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पांजवा, गुर अपने बलहारी जिन पूरन पैज सवारी, मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया,
गौर अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया संत हो तेस बिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाऊं

सोई संत गुण गावे। प्रेम भगत ताका मन लीणा, पार ब्रह्म मन पावे। आठ पहर हर का जस रमणा, बिखठ गौरी लाथी। संग मिलाए लिया मेरे करता, संत साध पए साथी। कर गह लीने सर्वस दीने, आपे आप मिलाया।

0: कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम जपायो, सर्व सुख हर नाम वडाय, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात देव सराद।

आसरों के आसरा। तन तन श्री गुरु रामदास जीओ महाराज। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ।

0: पहले खिल के ढूंढे सराजे की धुनी। सलोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने त्योहारी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जी सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदे
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ जे उसने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपड़े पी तन वेच सुआ पौड़िया पी।

सेवगिरी संतों की जन सचो सच पे आया। उन्हें मंद पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला मुझ देवी जड़े सुवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।

0: अंड जिजेर जुद पुजा खानी से तगा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए के समाले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी था सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वास तिस दिस बण पग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण मैं छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन कर तय करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा नी सान।

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते अरजा पड़िए जेते सास नानक लिखा एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते कढ़िया बहु तीर्थ पव्या ते तुलव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सहु वेजिया अपना किया अन न खाया साद गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एनिस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पागो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई

कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बधा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़े।

काल जोग दौरत दूर कर बेकार, दर्शन गुरु थगल थुख थागर। काल जोग दौरत दूर कर बेकार, दर्शन गुरु

0: तारियो संसार माया मत मोहित, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, रिद्धर सिद्ध न छोड़े साथ, दान बड़ा अतवंत महाबल, सेवक दास कह हो तथ, ताहे कहाँ परवाह कहूँ की, जाके बसीस तरयो गुर हाथ।
1: तीन पवन परपुरो सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे आसुरे, नर गन गंधर खो जंत फिरे, अबनासी अचल अजूनी संभो, पुरखोत अपार परे, करण कारण सम्राट सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो, श्री गुरु रामदास, जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो।
2: सतगुर नानक भगत करी इक मान, तन मन तन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूरत नि जितारी, अघम ज्ञान

0: मनसा आकार से मरंत तुझे हिनर, काम क्रोध मिट्यो जो क्षण, बाचा आकार से मरंत तुझे तेन दुख दृद मिट्यो जो क्षण, कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो।
1: जह सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटा खिन, जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जह सतगुर सिमरंत जिह की तपत मिटावे, जह सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निध पावे, सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरो।
2: जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ो पास, ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास, कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास के गुर रामदास।
3: जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासुर हर चरण निवास, ताते संगत सगन पाए पो मान है, तुम लियागर प्रगट सुबास, त्रू प्रहलाद कबीर त्रिलोचन, नाम लैत उपजो जो परगास, जेह बिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास।

सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पहला जिस जल निध कारण तुम जग आई सो अमृत गुर पाही जीव छोड़ो वेस भीख चतुराई दुबिधा एहो फल नाही जीओ जिस जल निध कारण तुम जग आई सो अमृत गुर पाही जीओ छोड़ो वेस भीख चतुराई दुबिधा एहो फल नाही जीओ मन रे थिर रहो मत कत जाही जीओ बाहर ढूढ़त बहुत दुख पावै है

निर्मल नाम जपहौ सद गुरमुख, अंतर की गाते ताही जीओ। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागह, सच गुर बचनी फल पाही जीओ। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जीओ, जन नानक शब्द सलाही जीओ। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागहु, सच गुर बचनी फल पाही जीओ। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जीओ,

राम कहे सितंबर स्वामी, सच में आछे सच रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहया भरपूर, राम नाम देवा में सूर। नाय लै प्रचित जाहे नानक तो मुखन तृपाहे। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया। पार जात गोपी लाया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद थर्बण हुआ, नाव खुदाई लो पया। नील बस्तर ले कपड़े पहरे, तुर्क उठानी अमल किया। चारे वेद होए सचार पर।

पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, संध्या बादंग, उछल पूजस बगल समाधंग, मुख झूठ विपुखन सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गलमाला तिलकले लाटंग, दोय तोती वस्त्र कपाटंग, जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं, कहो नानक नेह चौत्यावै।

बोल दिवाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी के पातशाह दसवी प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जैस डठ सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादिया चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी किस्सा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने